0: ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੇ ਟਰੰਪ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਰਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਠੋਕਣੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣਾ ਬਚਣ ਦੀ ਜਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7।
1: इस बीच किस हाल में है मौजूद तबा खाम ने, उनके हेल्थ पर क्या आया अपडेट जानेंगे। कोलंबिया में भूकंप से बड़ी तबाही, 180 लोगों की मौत, सालों बाद आए इतने ताकतवर भूकंप के बाद कैसे हैं हालात, दिखाएंगे रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच कल रात भर जारी रहे हमले, रूस ने यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़्या पर भीषण हमला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाया आरोप, बताएंगे प्रोग्राम में। सूडान में गृह युद्ध ने बढ़ाई कई चिंताएं, रेप की वजह से पैदा हुए बच्चों को नहीं मिल पा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट। ब्रिटेन में सेना में महिलाओं को मिल रही ऐसी यूनिफॉर्म जो नहीं होती है उन्हें फिट, इसका क्या हो रहा है उन पर असर, और सुधार की बात होने के 5 साल बाद भी क्यों नहीं हो रहा है बदलाव, दिखाएंगे रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग और उसे पूरी तरह रुकवाने की कोशिशें किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिख रही है। इसके बीच ईरान के सुप्रीम लीडर की हेल्थ पर नया अपडेट आया है, इस पर आगे बात करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, ऐसी खबर है कि ईरान से खतरे को देखते हुए पिछले महीने उन्हें अपना इमरजेंसी एस्केप प्लान करना पड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुपके से केटरिंग ट्रक में छिपकर अपना प्लेन बदला था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पिछले महीने यह सब हुआ था तुर्की में नेटो के समिट के बाद, जब ट्रंप वहां से रवाना हो रहे थे। टीवी कैमरों के सामने राष्ट्रपति ट्रंप अपने प्लेन एयरफोर्स वन पर सवार हुए, मगर वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसके बाद उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए सेना के एक प्लेन में ले जाया गया, और यह सब इस तरह किया गया कि एयरफोर्स वन में बैठे व्हाइट हाउस के स्टाफ और पत्रकारों को इसका पता भी नहीं चला। अमेरिका में बीबीसी के पार्टनर सीबीएस को अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका को काफी पक्की जानकारी मिली है कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप के प्लेन पर मिसाइल फायर कर सकता है, हालांकि व्हाइट हाउस ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। आइए समझते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यह प्लेन बदला। यह तस्वीर है 8 जुलाई की, अंकारा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने एयरफोर्स वन में ऐसे सवार हुए, और फिर ये कहा जा रहा है कि एक तरफ पत्रकार एयरफोर्स वन पर यहां पीछे की तरफ सवार हो रहे थे, तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्लेन के दूसरी तरफ काफी ऊपर उठाए गए, एक केटरिंग ट्रक में चले गए। ये केटरिंग ट्रक तो यहां है, यानी वो ट्रक जिसके जरिए प्लेन में खाने पीने का सामान लोड किया जाता है, और फिर वो केटरिंग ट्रक पास ही खड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-32A की तरफ बढ़ गया। ये है वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और कहा जा रहा है कि ट्रंप इस प्लेन में सवार हो गए, और फिर बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति प्लेन लैंड करने के बाद फिर से एयरफोर्स वन में सवार हुए और उसी तरह से बाहर निकले मानो कुछ हुआ ही ना। और जब यह सब कुछ चल रहा था, तब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजशकिया ने कहा कि देश के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई अच्छी हालत में है। 1 मार्च को इसराइल और अमेरिका के हमले के पहले ही दिन, जब पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी, उसी हमले में मुज्तबा भी घायल हुए थे और तब से वो कहीं दिखे नहीं है। और कल पेजशकिया ने कहा कि उनसे कई मसलों पर चर्चा हुई है और वो 7 से 8 घंटे तक चर्चा कर सके हैं, ऐसे में उनकी सेहत को खराब नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही अब ईरान की मिलिट्री में 6 नए लीडर्स IRGC और सेना के अलग अलग विंग्स में हुई हैं। इसे भी जंग के बीच ईरान का एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के पास ना आर्मी बची है, ना एयरफोर्स है और ना ही नेवी है। और अब बात कोलंबिया की, जिसके पश्चिमी हिस्से में आए जबरदस्त भूकंप के बाद 180 लोगों की मौत हुई है और भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और बचावकर्मी सर्वाइवर्स की तलाश में अब भी लगे हुए हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि खराब सड़कों और कम्युनिकेशन में रुकावट की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। 7.4 तीव्रता वाले

0: इस भूकंप का केंद्र चोको इलाके में मेडिजिन और कैली के बीच में था। शुक्रवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले अबेलार्डो डालेला एस्प्रेला ने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया है। स्थानीय एयरपोर्ट्स आम लोगों के लिए बंद रहेंगे, दवाइयां, जरूरी सामान और सरकारी काम के लिए खुले रहेंगे। देखिए बीबीसी संवाददाता शाइमा खलील की रिपोर्ट।
1: एक आम दिन चंद सेकंड्स में तबाह हो गया। खड़े होने के लिए कोई भी स्थिर जगह नहीं थी। मेनिजेलस में लोगों को जो मिला उससे वो चिपक कर खड़े हो गए। सुबह की भीड़ भाड़ वाले समय में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया जिससे इमारतें ढह गईं। लोग जान बचाने के लिए भागे, पैरों के नीचे सड़कें हिलने लगी और वो लड़खड़ा रहे थे। कैली के इस अस्पताल में बिल्डिंग का बाहरी हिस्सा एम्बुलेंस पर गिरने के बाद लोग इधर उधर भागने लगे। यहाँ इमरजेंसी क्रू 3 मंजिला इमारत के मलबे और मुड़े तुड़े लोहे के ढांचे के बीच लगातार अपना सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। डर फैलने पर कैली के मेयर ने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की।
2: फिलहाल कैली में कम से कम 20 बिल्डिंग्स ढह गई हैं और उनमें लोग फंसे हुए हैं। मैंने बोगोटा और मेडिजिन के मेयर से बचाव कर्मियों को भेजने की मांग की है। इसके अलावा हम कैली की सभी राहत एजेंसियों के साथ मिलकर इस मुश्किल हालात से निपटने में लगे हैं। मैंने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
1: ये पेरियारा शहर था। तबाही का पूरा मंजर अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है। भूकंप का केंद्र पश्चिमी चोको क्षेत्र के छोटे से कस्बे सैन होजे डेल पामार के पास था, लेकिन इसका असर पूरे कोलंबिया और उसकी सीमाओं के पार भी महसूस किया गया। शुक्रवार को ही शपथ लेने वाले देश के नए राष्ट्रपति और उनके प्रशासन का ये पहला बड़ा संकट है। जो लोग बच गए हैं उन्हें चेतावनी दी गई है कि वो बाहर रहें और उन इमारतों से दूर रहें जो अब सुरक्षित नहीं रहीं। सर्वाइवर्स की तलाश जारी है इस उम्मीद में कि और भी लोग मलबे में जिंदा मिल सकते हैं और इस डर के साथ भी कि जमीन फिर से खिसक सकती है। बीबीसी संवाददाता शाइमा खलील की रिपोर्ट।
0: और बीती रात रूस और यूक्रेन के बीच हमले जारी रहे। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि रूस ने यूक्रेनी शहर ज़ापोरिज़्या पर भारी बमबारी की है। इस बमबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हुई है, 19 लोग घायल हुए हैं। राजधानी कीव पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस पर उत्तर कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, लेकिन यूक्रेन ने भी रूस पर हमले जारी रखे। तस्वीर में रूसी शहर ओर्स्क में धुएं का बड़ा गुबार देखा जा सकता है जो कि फ्रंट लाइन से 1500 किलोमीटर दूर ही है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि उसने बीती रात एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। वहीं दक्षिणी रूस के वोरोनेज में मौजूद देश के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर वाइल्ड बेरीज के गोदामों में भी आग लगी है। स्थानीय गवर्नर का कहना है कि ड्रोन अटैक्स में हुए हमले में एक शख्स की मौत हुई है। लेकिन यूक्रेन खुद की हिफाजत कितनी अच्छी तरह कर सकता है, इसे लेकर यूक्रेन में सवाल उठ रहे हैं। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता डैन जॉनसन।
3: There's been a real desperate shortage of the Patriot.
4: बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा देने वाले इंटरसेप्टर्स की असल में काफी कमी है और हम समझते हैं कि वही कल रात को कीव पर दागी गई। हमने एयर डिफेंस सिस्टम की फायरिंग भी सुनी तो ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम कल रात हुए इस हवाई हमले से कीव को बचाने में बड़े पैमाने पर कामयाब रहा और सिर्फ एक ही शख्स घायल हुआ। लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि इंटरसेप्टर्स की सप्लाई के बिना वो यूक्रेन को रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं बचा सकते और यही डर दिन ब दिन बढ़ रहा है क्योंकि रूस लगातार कोशिश कर रहा है कि उसकी मिसाइलें निशाने पर लगें। लेकिन यूक्रेन ने काफी प्रभावी तरीके से रूस के ड्रोन अटैक्स को नाकाम किया है। मिसाइलें बहुत तेजी से आती हैं, उनसे सुरक्षा करना मुश्किल होता है और अगर पेट्रियट मिसाइलें नहीं आती तो उनका कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति ने अपील की है कि इन मिसाइलों की सप्लाई को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इनके आने में देरी हुई तो यूक्रेनी जिंदगियों पर खतरा बढ़ जाएगा।
0: और सूडान में सेक्सुअल वायलेंस को जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है कि ये इस संघर्ष की पहचान बन चुका है। लेकिन ट्रॉमा के बाद भी सर्वाइवर का दुख खत्म नहीं होता। अगर वो बच्चों को जन्म देती हैं तो उन्हें सिर्फ सोशल स्टिग्मा ही नहीं बल्कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब बच्चे के पिता की पहचान नहीं हो पाती या उनका पता नहीं होता तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना और पैदा हुए बच्चों को रजिस्टर्ड करवाना और भी मुश्किल हो जाता है। यह अमीरा की कहानी है जिनका ये असली नाम नहीं है। इसके कुछ हिस्से आपको विचलित कर सकते हैं।
5: मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और ना ही

0: नेशनल आईडी नंबर है क्योंकि उसके पिता नहीं है। मुझे अपने बच्चे के भविष्य को लेकर डर लगता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है।
1: अमीरा जो एक टीनेजर मदर हैं, उनका ये असली नाम नहीं है। अमीरा की कहानी में हिम्मत है और ऐसा ट्रॉमा जो अकल्पनीय है। उन्होंने अपहरण, सेक्सुअल वायलेंस और विस्थापन सब कुछ सहा है। नॉर्थ दारफूर स्टेट के अल-फशर में जब रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी RSF ने हमला किया तो अमीरा ने अपने परिवार के साथ भागने की कोशिश तो की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।
0: तीन हथियारबंद पुरुषों ने मेरा अपहरण किया। वो मुझे अल-फशर के दक्षिण में मौजूद थाबित इलाके में लेके गए। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां वो हर रोज मेरा रेप करते थे।
1: जब ये पता लगा कि वो गर्भवती हैं, तो उन्हें जमजम डिस्प्लेसमेंट कैंप के बाहरी इलाके में छोड़ दिया गया। महिलाओं की लीडरशिप में चलाए जा रहे NGO नदल एल अजहर ने अमीरा की मदद की और सपोर्ट किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शजा अहमद ने कहा कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़े बताना मुश्किल है।
2: जिन महिलाओं के रेप हुए और उन्होंने फिर बच्चे को जन्म दिया, इसके आंकड़े जुटाना आसान नहीं है। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है स्टिग्मा। इनमें से ज्यादातर माँ 18 साल से कम उम्र की लड़कियां होती हैं। वो खुद कानूनी तौर पर कोर्ट या पुलिस के पास जाकर शिकायत नहीं करवा सकती। इसके लिए उन्हें अपने अपने अभिभावकों की जरूरत होती है। लेकिन जो मामले हमारे सामने आते हैं, उनमें लगभग 90% मामलों में परिवार शिकायत दर्ज कराने की इजाजत ही नहीं देता।
1: सूडान में बच्चों के लिए बने कानूनों में 2010 में संशोधन किया गया। इनमें उन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है जो कि बिना शादी के पैदा हुए। लेकिन जंग चौथे साल में है। इसने सरकारी स्ट्रक्चर और लोगों के लिए जरूरी सर्विसेज को कमजोर कर दिया। इसका नतीजा ये कि कई बच्चे, खासकर रेप के बाद जन्मे बच्चे, अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं होने का मतलब है कोई कानूनी पहचान ना होना।
0: मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं है जो मेरा सपोर्ट करे। मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होगा। अगर मैं काम की तलाश में बाहर निकली तो मुझे डर है कि कहीं फिर किसी मुसीबत में न फंस जाऊं।
3: और ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन्हें अब भी ऐसी किट्स और यूनिफॉर्म दी जा रही हैं जो उनकी बॉडी शेप के हिसाब से ठीक नहीं है। 2021 में हुई एक पार्लियामेंट्री रिव्यू मीटिंग में इसमें तुरंत सुधार की मांग की गई थी, लेकिन कुछ मौजूदा और पूर्व महिला सैनिकों का कहना है कि समस्या अब भी बनी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए BBC संवाददाता रेबेका रिक्स की रिपोर्ट।
1: इन्फेंट्री रिजर्विस्ट रही रायन ब्राउन साल 2024 तक 7 सालों से सर्विस में रही, लेकिन अच्छी फिटिंग वाली मिलिट्री यूनिफॉर्म ढूंढना उनके लिए एक चैलेंज था।
4: Even the smallest. मेरे लिए सबसे छोटी शर्ट भी ड्रेस जैसी लगती थी। ट्राउजर के साथ मेरा एक्सपीरियंस मिला जुला रहा, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है।
1: हम उनसे एक मिलिट्री सरप्लस स्टोर में मिले जहां उन्होंने हमें साइज और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के बारे में बताया।
4: So for the most part, you expect... लोगों को ज्यादा से ज्यादा यही लगेगा कि ये बस एक यूनिफॉर्म है।
1: एक सैनिक के नाते रायन के पास कई सारी यूनिफॉर्म थी। इनमें कमर और पैरों की अलग अलग लंबाई का ध्यान रखा गया था।
4: थ्री टीयर सिस्टम काम तो करता है, मगर तभी जब साइज उपलब्ध हो। लेकिन असली चुनौती यही है कि अक्सर आपको साइज नहीं मिलते।
1: क्या आपको कभी अच्छी फिटिंग वाली यूनिफॉर्म मिली?
4: शायद एक या दो बार।
1: रायन ने 2 साल पहले आर्मी छोड़ दी, लेकिन हमने उन महिला ऑफिसर्स से बात की जो अभी भी नौकरी कर रही हैं। 5 साल पहले एथर्टन रिपोर्ट में सामने आया कि महिलाओं के लिए सही फिटिंग वाली किट ना होना इकलौती असुविधा नहीं थी।
5: दुश्मन की तरफ से हमला होने पर आपको तुरंत उसका जवाब देना होता है, और आपको उस हमले को रोक कर उसका जवाब देना होता है जो आपको टारगेट कर रहा होता।
1: वेटरन फ्लाइट सर्जेंट स्टेसी डेनियर इराक में तैनात रही थी, लेकिन उनका कहना है कि उस समय उन्होंने जो बॉडी आर्मर पहना था वो बहुत बड़ा था।
5: अगर आप लेट कर निशाना साध रहे हैं और आपको पता चले कि आपका हेलमेट आपकी आंखों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि आपका बॉडी आर्मर पीछे से ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपको फिट नहीं हो रहा, इससे गोली चलाते समय आपका ध्यान भटकता है।
1: स्टेसी की सर्विस के बाद और एथर्टन रिपोर्ट के सामने आने के बाद किट में सुधार किए गए। इनमें बेहतर प्रोटेक्टिव गियर और ज्यादा साइज तो हैं, लेकिन परेशानी अभी भी बनी हुई है। अक्टूबर में रेगुलेटर ऑफस्टेड ने कहा कि उन्हें पता चला कि लगातार चौथे साल महिला और छोटी कद काठी वाले नए कर्मचारियों को ऐसे कपड़े या उपकरण दिए जा रहे हैं जो उन पर ठीक से फिट नहीं होते। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के लिए स्केलेबल बॉडी आर्मर कई साइज में उपलब्ध होंगे, जिससे फिटिंग, कंफर्ट और मूवमेंट में आसानी होगी। साथ ही बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के स्टैंडर्ड भी बने रहेंगे। इसके अलावा 2028 में मिलने वाली नई बैलिस्टिक प्लेट्स सभी सर्विंग सैनिकों को

0: बेहतर फिटिंग देगी। जरूरी बात यह है कि नया सिस्टम अभी भी महिलाओं के ब्रेस्ट से जुड़ी एक बड़ी समस्या का समाधान नहीं करेगा। मैं एक फैक्ट्री में आई हूँ जहाँ ब्रिटिश और विदेशी सेनाओं के लिए बॉडी आर्मर बनाए जाते हैं और यहीं पर उन्होंने एक नया डिजाइन तैयार किया है।
1: महिलाएं छोटे इंसानों की तरह नहीं है, उनका आकार अलग है, उन्हें उस प्रोटेक्टिव किट में होना चाहिए जो उनके लिए डिजाइन किया गया हो।
0: लेकिन नए डिजाइन में कर्व यानी घुमाव है, इलास्टिक प्लेट्स फ्लैट होती है।
1: हाँ, आप इसका कवरेज कैप देख सकते हैं
0: जिससे ये ब्रेस्ट के शेप के हिसाब से फिट हो जाती है। ये कंपनियां ब्रिटिश महिला सैनिकों की बॉडी शेप का डेटा इस्तेमाल करके ये पता लगाती हैं कि कर्व प्लेट से क्या फर्क पड़ेगा।
1: इस रिसर्च से पता चला है कि कर्व प्लेट की तुलना में फ्लैट प्लेट पहनने वाली महिला कम सुरक्षित होती है।
0: ये किट्स एक जरूरी ऑर्डर का हिस्सा है जिसके तहत ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी फोर्सेज में तैनात महिलाओं के लिए 2000 किट्स खरीदी हैं। फिलहाल कर्व प्लेट्स ब्रिटिश सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वो और आधुनिक बॉडी आर्मर बना रहे हैं जिससे कर्व बॉडी आर्मर प्लेट्स की खरीद संभव हो पाएगी। ऐसा लगता है कि इनकी डिलीवरी 2029 तक शुरू हो सकती है। बीबीसी संवाददाता रिबेका रिक्स की रिपोर्ट।
2: और आगे बढ़ने से पहले दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। सीरिया के कोर्ट ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को देश में गृह युद्ध के दौरान हुए अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। असद पद छोड़ने के बाद रूस भाग गए थे। उनके कजिन जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी के पूर्व प्रमुख थे उन्हें भी मौत की सजा सुनाई गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बंदूकों के परमिट देने पर रोक लगा दी है और कहा है कि मौजूदा लाइसेंसेस की भी समीक्षा की जाएगी। पिछले हफ्ते ही एक 14 साल के बंदूकधारी ने 9 लोगों की हत्या कर दी थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। थाईलैंड में लगभग आम लोगों के पास लगभग 1 करोड़ बंदूकें हैं, यानी लगभग 100 लोगों पर 15 बंदूकें। अमेरिकी चिप मेकर एनवीडिया ने $5 अरब जुटाने के लिए डील का ऐलान किया है। ये रकम वॉल स्ट्रीट में मौजूद 6 बड़ी वित्तीय कंपनियों से आएगी और इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर्स को बनाने में किया जाएगा। और आखिर में आज की एक दिलचस्प तस्वीर। फ्रांस में कुछ लोग ये साबित करने के लिए सामने आए कि कुल्हाड़ी चलाने में उनसे बेहतर कोई नहीं है। दरअसल हर साल होने वाले फेस्टिवल ऑफ वुड में लकड़ी काटने और पेड़ गिराने का एक कंपटीशन होता है जिसमें ताकत का प्रदर्शन होता है, साथ ही सहनशीलता का भी। लेकिन यहां सेहत और सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं, मेरा हैंडल है @bbcsarika। और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए।
3: बिल्कुल जी, ये सीगिया कुछ एक गल्ला बात खबर जड़िया सुनिया अज के प्रोग्राम च, क्योंकि अगेन जगह जगह चर्चा जी ट्रंप की चल रही थी कि ट्रंप किस तरीके भजे ने उस टाइम के उत्ते। कई बार अक्सर की होंगे कि भी लोग समझ लेंगे भी पतला होना जरा बड़ा वधिया गलबात मनी जाती है। लेडीज वास्ते भी लोग पतले होने के चक्कर च पै जाते, बाकी शरीर का सारा ही ध्यान जरा छड़ देंगे अपने शरीर वाले पास्यो, ते सिर्फ इन्ना जड़ियां गल्लां पता कुछ आ रही हैं। ते जेड़े भी बच्चे जेड़े ने स्पेशली लेडीज के बारे गलबात की जाती भी जेड़ियां अपने आप नू सेहतमंद रखदियां ने ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਤਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਥਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ।
4: ठीक थाइज यानी भारी जांघों को लेकर अक्सर कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते।

0: ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन की प्रोफेसर क्लेयर स्टीव्स के मुताबिक इस बात के बहुत पुख्ता सबूत हैं कि जांग में मौजूद तीन टिश्यूज में से एक मांसपेशी अच्छी सेहत और लंबी उम्र से बहुत मजबूती से जुड़ा है। शरीर में ज्यादा मांसपेशियां होने से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित रखने में मदद मिलती है, इससे डायबिटीज, हृदय रोग और दूसरी पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2009 में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि छोटी जांघें पुरुषों और महिलाओं दोनों ही में हृदय रोग और मौत के बढ़ते जोखिम से जुड़ी थी। मजबूत जांघें शरीर में कमजोरी को रोकने में भी मदद कर सकती हैं। डॉक्टर स्टीव्स लंदन के गाइज एंड सेंट थॉमस अस्पताल में भी सलाहकार हैं। वो बताती हैं, बुढ़ापे में रोजमर्रा के काम करने के लिए क्वाड्रीसेप्स की मांसपेशियां बेहद जरूरी होती हैं। इन्हीं की मदद से आप कुर्सी से उठकर चल फिर सकते हैं। बुढ़ापे में हमारा दिमाग कितना बेहतर तरीके से काम करता है, इसका सीधा संबंध हमारे पैरों की ताकत से जुड़ा है। 300 से ज्यादा जुड़वा बच्चों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि जिन जुड़वा बच्चों के पैर स्टडी की शुरुआत में ज्यादा मजबूत थे, 10 साल बाद उनकी सोचने समझने की क्षमता और मस्तिष्क की संरचना बेहतर थी। ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि सक्रिय मांसपेशियां कुछ ऐसे रसायन बनाती हैं जो बढ़ती उम्र में सूजन को कम कर सकते हैं और मस्तिष्क के नेटवर्क की रक्षा करके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। स्टडी करने वाली डॉक्टर स्टीव्स ने आगे कहा, शारीरिक गतिविधि का हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी गहरा असर पड़ता है। KCL की एक और स्टडी में बहुत ज्यादा सक्रिय बुजुर्ग साइकिल चालकों को भी शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली युवाओं जैसी थी, कुछ मामलों में तो ये 20 साल की उम्र वाले लोगों के बराबर थी। हो सकता है कि आप सोचें कि जांघों को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। फिटनेस कोच एलिजाबेथ डेविस भी मानती हैं कि लोगों को अपनी जांघों का आकार बदलने के बजाय उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ट्रेनिंग फॉर योर ओल्ड लेडी बॉडी की लेखिका डेविस कहती हैं, अगर आपने सालों से ये चाहा है कि आपकी जांघें छोटी, बड़ी या अलग दिखें, तो अब इस सोच को पीछे छोड़ने का समय आ गया है। आइए इस बात पर ध्यान दें कि आपकी जांघें क्या कर सकती हैं। वो इस बात पर भी जोर देती हैं कि जांघें छोटी हों या बड़ी, वे फिर भी मजबूत हो सकती हैं। आकार के बजाय ताकत पर ध्यान देने की इस सोच को विज्ञान भी समर्थन देता है। 2006 में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि पैरों की कमजोर मांसपेशियां छोटी मांसपेशियों की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। डेविस का कहना है कि अगर आप जांघों की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबसे अच्छा तरीका है। वजन उठाने से हड्डियों का घनत्व यानी डेंसिटी बेहतर होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव में मदद मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी स्थिति है जिनमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। डेविस का सुझाव है कि शुरुआत में हफ्ते में 2 या 3 बार पैरों की वर्जिश करना बेहतर रहेगा। वजन उठाना शायद आपकी पसंदीदा एक्सरसाइज ना हो, लेकिन डेविस अपने क्लाइंट्स को इसे अपनी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वैसे जांघों की चर्बी शरीर के दूसरे हिस्सों की चर्बी जितनी नुकसानदायक नहीं होती, खासकर पेट के आसपास जमा चर्बी के मुकाबले ये कम नुकसानदायक मानी जाती है। स्टडीज से ये भी पता चला है कि शरीर के निचले हिस्से में जमा चर्बी एक तरह से सुरक्षा भी दे सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस हिस्से की फैट सेल्स नुकसानदायक फैटी एसिड को अपने अंदर रोक सकती हैं। इसका मतलब है कि शरीर की चर्बी कम करने से LDL, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, कम हो सकता है। वहीं HDL, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, बढ़ सकता है और ब्लड शुगर का स्तर कम हो सकता है। चर्बी का एक और काम भी है, बीमारी के दौरान ये शरीर के लिए ऊर्जा के आपातकालीन भंडार की तरह काम करती है। ये खास तौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए मददगार हो सकती है। ब्लैक गर्ल्स डू रन यूके की संस्थापक थॉमसन कहती हैं कि जांघों को मोटा या बड़ा करने के बजाय मैं उन्हें शक्तिशाली करने पर जोर देती हूं। वो अल्ट्रा मैराथन और ट्रायथलॉन में हिस्सा ले चुकी हैं। वो आगे कहती हैं, हम सभी अलग अलग आकार और रूप के होते हैं। असल में मायने ये रखता है कि आपका शरीर क्या कर सकता है, ना कि वो कैसा दिखता है।
1: सो ये सिगी जी रिपोर्ट, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ रिपोर्ट जेडी अपने भाईचारे दे विच भी ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ

0: ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ।
1: दोस्तों इस मैप को ध्यान से देखिए, इसमें हर स्टेट में होने वाली इंटरकास्ट मैरिजेस यानी कि अपनी कास्ट के बाहर होने वाली शादियों का परसेंटेज दिया गया है। मिजोरम में ये नंबर है 55%, मतलब वहां आधी से ज्यादा मैरिजेस अपनी कास्ट के बाहर होती हैं। मेघालय में 46%, सिक्किम में 38%, जम्मू एंड कश्मीर में 35% और गुजरात में लगभग 13%। अब इस लिस्ट के दूसरे एंड पर जाइए, मध्य प्रदेश में नंबर सिर्फ 1% है, मतलब लगभग 99% लोग अपनी ही कास्ट में शादी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखिए, वहां भी लगभग 98% शादियां अपनी ही कास्ट में हो रही है। अब एक पूरा नंबर इंडिया का इंटरकास्ट का देखिए, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे यानी कि IHDS के अकॉर्डिंग इंडिया में इंटरकास्ट मैरिजेस का फिगर आता है लगभग 5%। एक दूसरा एस्टिमेट बताता है कि नंबर लगभग 5.82% है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो इंडिया में आज भी 95% मैरिजेस अपनी ही कास्ट के अंदर हो रही है। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पिछले 40 सालों में यह नंबर लगभग बदला ही नहीं है, सेम रहा है, कोई भी क्लियर अपवर्ड ट्रेंड नहीं है। यानी कि 1970s के आसपास भी फिगर लगभग 5% था और 2011 में भी ये सिर्फ 5% है। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि हर न्यू जनरेशन के साथ इंटरकास्ट मैरिजेस रैपिडली बढ़ रही है तो डेटा एक्चुअली इस बात को एग्री नहीं करता है। अब इन नंबर्स को थोड़ा साइड में रखते हैं और एक दूसरी चीज देखते हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 3 रिसर्चर्स ने IHDS और नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा को स्टडी किया और उन्होंने कास्ट के हिसाब से इंटरकास्ट मैरिजेस के नंबर्स निकाले। उसमें उन्होंने बताया कि ब्राह्मण्स में इंटरकास्ट मैरिजेस 6.3% है और फॉरवर्ड कास्ट में या अपर कास्ट के अंदर 6.2% है, ओबीसी के अंदर 4.8% और शेड्यूल कास्ट के अंदर यह है 4.76%। और यहां से एक हेडलाइन निकली कि सबसे ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस ब्राह्मण्स में होती है क्योंकि उनके अंदर परसेंटेज 6.30 आया। अब जरा रुककर सोचिए, जो कास्ट ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर रही है, जिसके बारे में हिस्टोरिकली कहा जाता है कि उनमें एंडोगेमी यानी कि अपनी कास्ट के अंदर शादी करने के रूल्स काफी स्ट्रांग है, क्या आज वही ग्रुप सबसे ज्यादा कास्ट के बाहर शादी कर रहा है? तो सवाल यह है कि क्या इंडिया सच में बदल गया है? क्या वो कास्ट वाली जो दीवार जो सेंचुरी से खड़ी थी अब वो टूट रही है, या फिर इस नंबर के पीछे कुछ और कहानी छुपी है जो फर्स्ट लुक में हमें नजर नहीं आ रही है? अब मैं आपको इसका आंसर अभी नहीं दूंगा क्योंकि इस पूरी स्टोरी थोड़े से क्लूज छुपे हुए हैं इस डेटा के अंदर और हम 4 ऐसे क्लूज को देखेंगे और जैसे जैसे हम इन क्लूज को समझेंगे पूरी पिक्चर एक्चुअली क्लियर भी होगी और चेंज भी होती चली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्लू नंबर 1 देखते हैं। पहला क्लू है पैसा। हम जनरली ये सोचते हैं कि जैसे जैसे फैमिली अमीर होती है, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते हैं और जैसे जैसे लोग सिटीज में शिफ्ट होते हैं, वैसे वैसे सोसाइटी जो है मॉडर्न होती चली जाती है और मॉडर्न सोसाइटी में कास्ट की वॉल्स जो है वो वीक होने लगती है। लॉजिक तो बिल्कुल सही लगता है देखने पर, लेकिन डेटा कुछ और बताता है और यहां एक्चुअली पूरी पिक्चर बदल जाती है। इस स्टडी में लोगों को उनकी वेल्थ के बेसिस पर 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पुअर ग्रुप में इंटरकास्ट मैरिज का रेट था 5.89%, सबसे अमीर ग्रुप में 4.01%, मतलब जो लोग सबसे अमीर हैं वो कास्ट के बाहर सबसे कम शादी कर रहे हैं। इनकम के बेसिस पर भी ऑलमोस्ट सेम बात निकली। मिडिल ग्रुप्स में रेट था 5.58%, लेकिन अपर ग्रुप्स में ये गिरकर नंबर हो जाता है 4.07%। तो पहला क्लू क्या कहता है कि पैसा और मॉडर्न लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली कास्ट सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े और वेल्दी फैमिलीज में शादी सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स का रिलेशनशिप नहीं है, शादी के साथ साथ प्रॉपर्टी भी जुड़ी होती है, लैंड जुड़ा होता है, बिजनेस जुड़ा होता है और फैमिली की रेपुटेशन जुड़ी होती है और सोशल स्टेटस और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए बड़ी फैमिलीज में शादी कभी कभी सिर्फ 2 लोगों को कनेक्ट करने का डिसीजन नहीं होता है, वो एक्चुअली फैमिली की प्रॉपर्टी, स्टेटस और सोशल नेटवर्क को एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर मेंटेन करने का भी तरीका होता है। सिंपल वर्ड्स में आप समझें तो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी और सोशल स्टेटस उतनी ही ज्यादा कंसर्न कि ये कहीं बाहर ना चला जाए, स्टेटस ब्रेक ना हो जाए या प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में ना चली जाए। इसलिए सोसाइटी के अपर सेक्शंस में एंडोगेमी काफी स्ट्रांग रहती है। चलिए दूसरे क्लू पर देखते हैं, उसे हम कहते हैं शहर या अर्बनाइजेशन। हम सबके माइंड में एक कॉमन आइडिया है कि कास्ट तो एक्चुअली विलेजेस में होती है, सिटी में आखिर कौन आपको कास्ट पूछता है। लेकिन मेट्रोज में देखिए, दिल्ली में अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, मुंबई में अलग अलग कम्युनिटीज हैं, बैंगलोर में अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही कैफेटेरिया में खाना खाते हैं, तो नेचुरली आपको क्या लगता है कि सिटी में कास्ट की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। लेकिन डेटा फिर से आपको सरप्राइज कर देता है कि विलेज में इंटरकास्ट मैरिजेस 5.24% है और उल्टा है सिटीज में मात्र 4.99% है। यानी कि सिटी में फिगर एक्चुअली गांवों के मुकाबले थोड़ा कम है इंटरकास्ट शादियों का, मतलब सिर्फ सिटी में शिफ्ट हो जाना कास्ट को ऑटोमेटिकली खत्म नहीं करता है।

0: लोग सिटी में आते हैं, नौकरी करते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, लेकिन डिफरेंट कास्ट के लोगों के साथ डेली इंटरेक्ट भी करते हैं, लेकिन जब शादी का डिसीजन आता है तो वो बहुत बार वापस अपने कास्ट नेटवर्क में ही चले जाते हैं। और आज तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आप देखिए, एप्स देखिए, उन्होंने कास्ट बेस्ड मैचिंग को और भी आसान कर दिया है। आप फिल्टर लगाइए सिंपली अपने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, जाट, कायस्थ, और आपके सामने स्पेसिफिकली उसी कास्ट के हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल्स सामने आ जाएंगे। तो सेकंड क्लू क्या कहता है कि अर्बनाइजेशन भी ऑटोमेटिकली कास्ट सिस्टम को ब्रेक नहीं करता है। तीसरे क्लू पर आते हैं जिसे हम कहते हैं टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडिया में जेन्युइनली कास्ट बाउंड्रीज रैपिडली ब्रेक हो रही होती तो हमें ये चेंज टाइम के साथ में क्लियरली नजर आना चाहिए था कि न्यू जनरेशन को ओल्ड जनरेशन से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस करनी चाहिए थी, यानी कि 1970s से ज्यादा 1990s में शादियां होनी चाहिए थी इंटरकास्ट, और 1990 से ज्यादा इंटरकास्ट शादियां होनी चाहिए 2010 में, और आज हमारे पास उससे भी ज्यादा शादियां होनी चाहिए थी। लेकिन डेटा यह कहता है कि पिछले चार डिकेड्स में कोई भी क्लियर कट अपवर्ड ट्रेंड इंटरकास्ट मैरिजेस में नहीं नजर आया है, फिगर लार्जली सेम लेवल पर ही अटका हुआ है। मतलब सडनली क्या इंडिया चेंज हो गया, ये कंक्लूजन डेटा सपोर्ट नहीं करता है। अगर चेंज है भी तो ये कोई सडन चेंज आपको नजर नहीं आ रहा है। अब क्लू नंबर चार देखिए कि दो नंबर्स के बीच का गैप, और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ब्राह्मिन्स के अंदर अपर इंटरकास्ट मैरिजेस है 6.3% और बाकी जो अपर कास्ट है उसके अंदर जो इंटरकास्ट मैरिजेस का डिफरेंस, मैरिजेस का जो परसेंटेज है वो है 6.2% और दोनों के बीच में डिफरेंस 0.10%। दोनों नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है, और खुद स्टडी में रिसर्चर्स ने कहा कि ब्राह्मिन्स की जो इंटरकास्ट की मैरिजेस की रेट है बाकी ग्रुप से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स की सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि हम इस बेसिस पर यह क्लेम कर दें कि ब्राह्मिन्स बाकी ग्रुप से ड्रामेटिकली ज्यादा इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं। लेकिन हेडलाइन क्यों बनी, हेडलाइन ये बनी कि ब्राह्मिन्स हैव द हाईएस्ट इंटरकास्ट मैरिजेस रेट, यानी कि पूरी हेडलाइन मात्र 0.10% के डिफरेंस पर ही खड़ी थी। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर ब्राह्मिन्स और बाकी जो अपर कास्ट का रेट ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ओबीसी और एससी एसटी से थोड़ा ऊपर भी है, तो क्या यह जरूरी है कि ये कास्ट बाउंड्रीज को उस तरह क्रॉस करना है जैसे हम नॉर्मली इमेजिन करते हैं? शायद ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये मूवमेंट लार्जली अपर सोशल ग्रुप्स के अंदर में आपस में ही हो रहा हो, यानी कि कास्ट की बाउंड्रीज ओवरऑल ब्रेक ना हो रही हो लेकिन अपर कास्ट के बीच में कास्ट की बाउंड्रीज ब्रेक हो रही हो, यानी कि एक ब्राह्मण का किसी दूसरी अपर कास्ट में मैरिज करना डेफिनेटली कास्ट बाउंड्री को क्रॉस तो करता है लेकिन सोशल डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये उस मैरिज से बहुत डिफरेंट है जहां कोई पर्सन सोशल हायरार्की का एक एक्सट्रीम एंड से दूसरे एक्सट्रीम एंड तक मैरिज करता है, यानी कि कोई लोअर कास्ट का आदमी जो अपर कास्ट से शादी करता है इस लेवल का कास्ट बाउंड्रीज ब्रेक नहीं हो रही है। यानी हर इंटरकास्ट मैरिज सोशल हायरार्की को एक जैसी डिस्टेंस या एक जैसी डिस्टेंसिंग के हिसाब से चैलेंज नहीं करती है। तो अब हमारे पास में चार क्लूज हैं। पैसा कास्ट को ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं करता है, सिटी कास्ट को ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं करती है, 40 सालों में कोई मेजर अपवर्ड ट्रेंड नहीं आया है, और ब्राह्मिन्स और जो बाकी अपर कास्ट है उनका नंबर इंटरकास्ट मैरिजेस का ऑलमोस्ट सेम है। और अब ये चारों क्लूज एक ही सवाल पर ले आते हैं कि अगर कुछ भी ड्रामेटिकली चेंज नहीं हुआ तो ब्राह्मिन्स का नंबर सबसे ऊपर क्यों नजर आ रहा है? और अब मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, और आंसर ब्राह्मिन सोसाइटी की थिंकिंग में नहीं है, सर्वे में पूछे गए उस एक सवाल के अंदर है। असली सवाल क्या था कि IHDS सर्वे में मैरिड वुमेन से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, उस एक सवाल के अंदर है। असली सवाल क्या था कि IHDS सर्वे में मैरिड वुमेन से एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपके हस्बैंड की जो फैमिली है, आपके मायके की फैमिली की जो कास्ट है और आपके हस्बैंड की फैमिली की जो कास्ट है, क्या ये सेम है? और क्वेश्चन में कास्ट के लिए इंग्लिश में कास्ट यूज हुआ, लेकिन एक्चुअल इंडियन टर्म जो यूज की गई है वो है जाति, और ये एक छोटा सा वर्ड पूरी स्टोरी को चेंज कर देता है। इसके दो मेजर इंप्लीकेशंस थे। पहला, आंसर सब्जेक्टिव है, सर्वे ने खुद ये डिसाइड नहीं किया कि किसी पर्सन की कास्ट को एग्जैक्टली कैसे डिफाइन किया जाए, उसने ये डिसीजन लार्जली रेस्पोंडेंट की अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ दिया, यानी एक वुमेन अपनी या एक औरत अपनी मैरिज को किस तरह से क्लासीफाई करती है।
1: पर मैनू एक दो चीजा याद ने जिदे च एक बार एक बजुर्ग मेनू दसदे वी उहनां दी जिहड़ी नूह है ओह दूसरी हिंदू कास्ट दी है, मतलब नॉट ब्राह्मण नहीं हैगी पर फिर भी उहनां नूं कोई इतराज नहीं हैगा भी चलो हिंदू कास्ट दे अपर कास्ट च ही आंदे ने ते इट्स ओके आपां एक्सैप्ट कर लिया। एक बजुर्ग मेरे नाल एक बार मैनूं पता भी काफी देर हो गई ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ

0: जो है फ्री इवेंट फॉर द होल कम्युनिटी, तो आप जो है सबको आना है, ग्रीन एंड व्हाइट पेन, स्पेशल ग्रीन पेन के आइए, एंड बी जो है लुक्स लाइक ए पाकिस्तान डे, जैसे हम पाकिस्तान में मनाते हैं, इंशाल्लाह वी विल हैव द सेम फीलिंग्स हियर इन कैलगरी एज वेल, जैसा हम हर साल मनाते हैं। तो लेकिन सबसे पहले सलमा जी भी यहाँ पर मौजूद, हेलो सलमा जी।
1: जी हेलो जलाल, थैंक यू सो मच। सबसे पहले जैसे कि जलाल ने कहा, हम सब आपको ग्रीट करते हैं, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल याली मदद एंड अ ब्यूटीफुल, थोड़ी सी अच्छी सी मजे की शाम है, पकौड़े खाने वाली, चाय पीने वाली, तो उम्मीद है आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ आकर हमारे गेस्ट आ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे और पता चलेगा कि आने वाले जुम्मे को कौन सा फंक्शन होने वाला है, वो तो सारे हमारे पाकिस्तानियों को तो मालूम ही होगा। तो उस सिलसिले में हमारे पास तीन गेस्ट आ चुके हैं पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन की तरफ से, तो वो हमें कुछ बताएंगे कि क्या होने जा रहा है फ्राइडे 14 अगस्त को प्रेरीज विंड पार्क में। दैट्स राइट, या
0: तो विल टेक स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद जो हम जो है मिलते हैं हमारे गेस्ट के साथ, तो आपने जाना कहीं नहीं है। कीप लिसनिंग टू सलाम म्यूजिक कैलगरी ऑन रेडियो सलाम 94.7 FM, एंड मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बट लेट मी फाइंड माय एडवर्टाइज, कहां गई मेरी एडवर्टाइज,
1: एक अच्छे से प्रिजर्व कर लो उसको।
0: जो है आप थोड़े मिली रंग में अपना बजाएंगे, तो डोंट गो एनीवेयर, इट्स गोना बी लॉट्स ऑफ फन। और पीसी के मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनके जनरल सेक्रेटरी भी प्रेजेंट, उनकी टीम मेंबर्स भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सो और ओ गो, हियर वी गो।

0: It was just so that Pakistan has some representation here, the community has some representation here. And people don't understand that. If these, you know, Numan Bhai, Uncle Azhar, all these people trying to so wholeheartedly every year they run these elections. Yeah. This year, alhamdulillah, we didn't have one. So, but every year people go through a lot of lengths, you know, to make this happen just so there's some people on a board to represent the community. And if these people didn't put in that effort, their time, their money, it's like, who would be the voice? Right, of Pakistan. And I see so many other communities here, the Indian groups, the Sikh groups, and I wonder, why is it that within us Pakistanis, unfortunately, they don't have that much faith in PCA?
1: And
0: that's why they don't contribute. And like Numan Bhai said, we are still trying to get this to be recognized as a charitable organization. Mm-hmm. So we're not getting government funding either.
1: Yeah,
0: right?
1: That's so sad.
2: I think a lot of people think that we're going to get government funding.
0: No, we're not. That's a misconception we want to clear. We don't have government funding. All the execs, we are paying out of pocket just to do this. Even August 14th, now, you know, thankfully for our kind sponsors. Otherwise, it would have been very difficult.
1: Very difficult.
0: You know?
3: Sometimes we pay bills, we divide all the money on eight executives. We pay the bills from our own pocket.
1: I can understand.
2: Now you are back again in the executive committee. क्या difference लगा आपको? क्या लोगों की क्या thinking है? Community बढ़ गई, of course.
3: Community बढ़ गई, लेकिन थोड़ी सी एक चीज lack कर रही है कि involvement जो है ना वो कम है. I think 2006 में जब मैं आया था तो that's what I heard के उस वक्त जो है ना community roughly 20,000 के
2: आसपास
3: थी. अभी जो rough idea है तो official numbers नहीं है, लेकिन feel कर सकते हैं जो है ना.
2: Yes.
3: So there's more than 50,000.
2: Easily.
3: So उसके लिए जो है जितनी community है ना, हाँ, आठ बंदे हम लगे हुए हैं, तो criticism काफी है, especially social media पे हो जाता है. लेकिन I think practically that's one of the difference. जब मैं इसमें आया तो इसमें ये नहीं है क्योंकि मुझे कोई award मिल रहा है. एक चीज है ना, आप अपनी community की base बनाते हैं. आप इधर देखें जितनी communities हैं जो आज से बड़े पुराने आए हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, तो एक बेस बन जाती है और बेस होनी भी चाहिए. लेकिन पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन से बड़े हमारे रिसेंटली सिटिंग मिनिस्टर हैं जो चौधरी यासीन साहब, वो पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत अच्छे प्रेसिडेंट रहे. हमारे जितने पहले बंदे आए, हर बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना वो कर सकता है. तो लेकिन आई थिंक वी आर बिहाइंड के जितनी कम्युनिटी होगी
1: उसके लिहाज से.
3: हमारी 10 acres लैंड है, 100 street दूर नहीं है
2: जी.
3: तो लेकिन आपको पता है कि नई जगह पे डेवलपमेंट, फिर वो गोइंग थ्रू रॉकी व्यू काउंटी के साथ डील करना लगे. हम भी ट्राई कर रहे हैं, हम ये वो उसकी भी ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ डेवलप कर देंगे आने वाले जनरेशन के लिए. कुछ जिन बुजुर्गों ने स्टार्ट किया है पीसीए, वो दुनिया से चले गए, लेकिन वो एक विजन छोड़ के कम्युनिटी के लिए. लेकिन एक बेस अभी हमारा हाल है, 10 acres लैंड है, तो एक हमारी पहचान है. तो हम इसी पहचान के लिए हम काम कर रहे हैं. ये नहीं है कि इसमें कोई रिवार्ड, यही है सबसे बड़ा रिवार्ड, ये होता है कि कम्युनिटी के लिए अगर कुछ फ्यूचर हो जाए. वरना वैसे वो फाइनेंशियली तो कुछ नहीं. फाइनेंशियली जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि अपनी जेब से, सम कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं कि कुछ भी नहीं होता तो अपनी जेब से हम डिवाइड करते हैं. यार रमशा 200 डाल रहा, आप 200 मैं, तो हम बिल्स पे करते हैं.
2: हमारे शो पे हर कोई आता है, हर सारे इवेंट करने वाला, चाहे वो कोई डॉक्टर की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कोई कोई अकाउंटिंग की हो, व्हाटएवर. लेकिन जब भी हम ऐसे प्रोग्राम होते हैं पीसीए के, हम तो हमेशा वहां जाते हैं. वो सेम लोग एवरी ईयर आते हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, उसमें से कोई नहीं दिखता,
1: कोई नजर नहीं आता.
2: वो अपने अपने ग्रुप में बटे हैं. यू नो आई एम सॉरी टू से दैट, यू नो जो सुन रहे देख रहे हैं, आई एम सॉरी, लेकिन आप भी पाकिस्तानी हो यार. आप चलो 10 में से एक इवेंट में तो आ सकते हो. अगर आप 50 में से अगर 25,000 ले लें, अगर वो $1 महीने का दे, $1 महीने का, कैन यू इमेजिन कि हमारा कम्युनिटी हॉल कब बन सकता है राइट अवे. तो ऐसा पता नहीं क्यों ये डॉक्टर्स या जो इतने बड़े बड़े ग्रुप है, इंजीनियर से ग्रुप है, वो क्यों मिलके नहीं आते. पाकिस्तानी वो भी है, पाकिस्तान आनो उन्होंने इतना हर ग्रुप में होते हैं, नो डाउट. लेकिन अगर हम पाकिस्तान का जो हरा कलर देख के हम आ जाए एक झंडे के नीचे फॉर अ ईयर टू, हम कहां से कहां पहुंचे. कैन इमेजिन, वी नीड ए यंग ब्लड, नो डाउट.

0: मैटर, मैं किसी का नाम नहीं, अच्छा डोनेट करना चाहिए तो डोनेट करते हैं तो वो पता लगता है कैलगरी से 300,000 कोई ले 400,000, तो हमने सोचा कि अभी आने वाले दिनों में हम भी एक फंड रेजिंग रख रहे हैं पीसी के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए। तो हम देखें कैलगरी के जो बात कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स इंजीनियर सारे, देखिए किसी चीज को बेहतर करना हो ना तो उसके अंदर आना पड़ता है, बाहर से बैठ के
1: नहीं
0: करेंगे, कहते यार वो ये लोग कर रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। इट्स ओके, हम अगर गलत कर रहे हैं तो मुझे किसी एग्जैक्ट हमें आके लोग बताएं, हमारी हेल्प करें। अगेन के इसमें कोई पर्सनल तो है नहीं, कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। तो जिस तरह आप कह रहे हैं ये देखें जी, हमारी जो कम्युनिटी क्रीम होती है ना किसी भी कम्युनिटी की, वो डॉक्टर्स इंजीनियर्स ये पढ़े लिखे क्योंकि इनके पास नॉलेज ज्यादा होता है, प्लस ये प्रोफेशनली जो है ना ज्यादा डॉक्टर सबसे स्मार्ट जो है ना कंसिडर करते हैं हमारी कम्युनिटी।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हर बंदा चाहता है यार मेरा बच्चा डॉक्टर बने, तो हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये सारे हमारे साथ मिलकर काम करें और कम्युनिटी के लिए बेहतरी जो करते
1: हैं। ड्यूरिंग पैंडेमिक, जब पैंडेमिक शुरू हुआ, हमने जो हमारे जो अपना जो बड़ी अपना फैक्ट्रीज थी फॉर द मास्क एंड एवरीथिंग, हमारा जो है कनाडा में कुछ भी नहीं था, सब बंद। हालांकि मॉन्ट्रियल में जो उन्होंने बंद कर दी थी अपना कुछ साल पहले, इसलिए कि हमारी लीडरशिप में हमारे जो अपना जो एमपी बैठे हुए वहां के डॉक्टर्स ही नहीं है, उनमें से अकल कहां से है कि हमें ऐसा होना चाहिए चलना चाहिए। वी डोंट हैव एनीथिंग हियर, इसमें कोई एमपी है कोई लीड में नहीं है, स्कूल के टीचर वगैरह आ जाते हैं चलो ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स है वो हमें लीड में चाहिए, द वन हु कैन टेक केयर ऑफ दिस जो है एसेंशियल थिंग्स। नाउ दे आर वर्किंग ऑन के यार वी नीड ऑल दोस थिंग्स कनाडा में जो है मैन्युफैक्चर होना चाहिए सारा, नाउ दे आर वर्किंग ऑन इट।
0: ये बहुत पहले होना
2: चाहिए ना, अब बीच में गैप आ गया बहुत बड़ा, ये उस चीज को जैसे हमारा हेल्थ सिस्टम क्यों डिटेरियोरेट हो रहा है, इसीलिए ना कि वो डॉक्टर्स फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर्स को आप अगर उनको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेते वो सारे के सारे आपके लिए काम करते। हमारे यंग डॉक्टर्स 3 या 4 दिन से ज्यादा काम नहीं करना चाहते, दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस गैप। अब एकदम से उसको तो नहीं ठीक किया जा सकता ना, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, सो दीज आर द थिंग्स दे हैड टू कंसिडर बिफोर विच दे डिडंट। And now they're asking all the foreign medical graduates, okay, we will help you, we will do this with you, and you... It's that gap, who's going to fill it up then?
0: Canada ke bare mein bada mashhoor hai, ye bada famous hai, ki Canada mein bahut zyada doctors Pakistan, India se, un mulk se aaye hain, to idhar aake taxis chala rahe hain.
2: Yeah, bilkul.
0: Sahi kaha. Thoda sa system ko
2: change karna, pehle karna chahiye tha.
0: Easy kar
2: de. Ab inko realize hua hai, now they are starting to do it. Now,
0: wo
2: gap jo ho gaya.
0: Thoda sa time lage.
2: Yeah.
3: I heard it's still very hard.
2: Yeah, it is. It is. Very hard.
3: The challenge exams, yeah, they reduced them, but they're close to impossible to pass. Yeah.
2: Lekin ab
1: chalo humne jo hame bharas nikal diya, hum nikal diye. Let's talk about Pakistan Independence Day. हमारे पास रमशा भी है, हसन जो है अपना गुरु क्या लाहौर गुरु लाहौर भी है, और नमन भाई भी है फ्रॉम द पीसीए सेक्रेटरी ऑफ द पीसीए, और हमें जमाल भाई भी देख रहे हैं जो कि अपना परफॉर्म करेंगे उस दिन, साहिब अरशद भी देख रही है, हुमैरा फलक भी हमें देख रही है, लता जी भी हमें देख रही है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर, संगीता वर्मन भी हमें देख रही है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। तो यू नो हमने जो है भड़ास निकाल ली, तो लेट्स टॉक अबाउट 14 अगस्त एक बार फिर से। हमारे पास जैसे यंगस्टर है रमशा भी यहाँ पर मौजूद है, यंग हमारे यंग जनरेशन की तरफ से हसन भाई भी यहाँ पर मौजूद है, नुमान भाई ऑफ कोर्स एज अ लीडर यहाँ पर मौजूद है। उस दिन कितने में होगा, लेट्स टॉक अबाउट कि अब कितने शुरू होगा, 3 बजे
3: जी इंशाल्लाह, 3 बजे वी प्लानिंग टू स्टार्ट इट। हमें बस अभी थोड़ा सा ये वेदर कंडीशंस के लिहाज से,
1: आई थिंक दिस इज फ्राइडे विल बी बेटर डे,
3: होपफुली
2: इंशाल्लाह।
0: हम होप कर रहे हैं, लेकिन जो ये जो बात कर रही है अभी भी पीसीए हॉल में जो मीटिंग बैठी हुई यही बैठी है कि इन केस अगर फ्राइडे
1: प्लान भी होना चाहिए,
2: प्लान भी तो होना चाहिए ना,
1: ओके दैट्स गुड,
2: प्लान भी जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, फिर क्या
3: करेंगे, प्लान भी इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी
1: इनसाइड, या ठीक है। नमन एक बार फिर से कहते हैं कि उस दिन क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सिंग होगा, सिंगिंग पार्ट एंटरटेनमेंट क्या क्या होगा उस दिन
0: जी? उसमें पहले तो जो है ना 3 बजे का, 3 बजे ऑफिशियली चीजें हम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बनता बता माहौल थोड़ा सा जो है ना,
1: जी जी जी जी,
0: आई थिंक लेकिन 5 बजे के आसपास जाके सही थोड़ा
2: सही था, जी जी, सब लोग काम पे से भी तो आ जाएंगे ना,
0: उसमें जो है ना वो फ्लैग रेजिंग सेरेमनी होगी, जितने हमने गेस्ट डिग्निटीज बुलाए हुए तो वो आ जाएंगे, तो फिर कुछ कौमी तराने नगमे स्टार्ट होंगे, पहले بچوں کے شو وغیرہ ہوں گے
2: جی
1: اور نئی سکے
0: سپیچز ہوں گی

0: changing it to indoors.
1: Tonight or tomorrow morning.
0: Yeah?
2: Yeah.
3: So, at the latest by tomorrow morning.
4: Yeah, just keep an eye on the PCA
0: page.
4: Yeah,
0: that's yes. a good...
4: Yeah, Facebook
0: per
4: inka...
1: Yeah, please keep an eye on
0: yeah.
4: yeah. Okay. Anything else you want to add, Anuman bhai?
1: Sorry?
4: Anything else you want to add?
1: No, I just want to thanks again to you guys.
4: Oh, you're welcome, sir.
0: Yeah,
1: always, I know, you know, since we've been involved, you guys are there for us, you know.
0: Yeah, yeah.
4: You're welcome, sir.
1: Special thanks to all my sponsors, the game.
0: Yeah.
1: That's without right. them, there's no way,
0: yeah.
1: you know.
4: Thoda emotional ho jaye, taki logon ka emotion jaage. Taki zyada se zyada log aaye, hissa le, and you know. Bring PCA up, isliye hame zarurat hai PCA ki.
0: Yeah. Aap meri taraf se, it's a personal message. अच्छा लोगों को भी सुनाई दे आप मेरा मैसेज अपने कमेटी को पूरे एग्जीक्यूटिव को कि नेक्स्ट ईयर इज 80 इयर्स ऑफ पाकिस्तान या एंड आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई हैव बीन थिंकिंग आई हैव टॉक टू सम पीपल आई वुड लाइक टू डू अ सोलो शो कॉल्ड हमारा पाकिस्तान सो दिस इज माय मैसेज टू यू पीपल सो आई विल बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग Contact me if you people like the idea.
1: Why not? Definitely.
0: And I'm ready to a nice art exhibition and sale. And of course, some proceeds will go towards you people for sure. And it will be a great thing to do for 80th anniversary of Pakistan.
1: इलेक्शन
4: का बार है आप लोग
0: मैं
4: पूछ रहा हूँ ना बेसन से उनके इलेक्शन का बार
1: है अच्छा बस क्योंकि जो नए आने वाले वो भी हमारे
4: वो भी उत्तर पाकिस्तान
0: तो ये मेरा मैसेज है पर्सनल आप लोगों की टीम के लिए बिकॉज इट takes me a year to do an exhibition, to prepare an exhibition. So, inshallah.
4: आज का जो शो है सलाम नमस्कार इसको स्पॉन्सर किया कंट्री स्टोर इनका फोन नंबर 4032901111 cstwitter.com और थिंक ट्विटर थिंक द जॉइंट कंट्री स्टोर मोबाइल मोड के स्पेशलिस्ट रूबीना कासिम अली शी इज विद द टीडी बैंक इनका फोन नंबर 4038707069 केयर सर्कल होम हेल्थ कैलगरी इफ यू लुकिंग फॉर टू टेक केयर ऑफ योर लाइक योर सीनियर मेंबर्स इन योर होम इनका फोन नंबर 5879290 बट कड़ाई बैंकुट हॉल फॉर योर party or for all your anniversary or you can say birthday party Hamza Bhatt 4 587 352 0094 Nasim Jonas Calgary 8259875000 if you're looking for any gift for Ramsha you can give her buy from the Nasim Jonas Pakistan design only in Canada 8259875000 and Aizbeh Bashir for all your contact lens sunglasses in New Horizon Mall 4037203937 and if you want to have a website you can call Sai Ram Consulting in Company Siddharth Sharma or the Sakshi Sharma 306-715-306-715-8707 thank you so much Ramshad Hasan bhai and Noman bhai thank you so much sorry for my emotion hamare Pakistan aur jo aage badhe PCA aage badhe taki hum to unke saath hi let's have you know as a team one country here अवे फ्रॉम पाकिस्तान लेकिन हमारा यहाँ खुद का पाकिस्तान यहाँ पर हो हमें और मजा आएगा और लेट्स जो सेलिब्रेट टुगेदर August 14th, 2026 3 PM विद केक सेरेमनी डिग्निटरी स्पीचेस लॉट्स ऑफ फन फॉर द किड्स एंड फॉर द होल फैमिली इट्स फ्री इवेंट वेयर ग्रीन एंड इंशाल्लाह विल सी यू देयर सो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक डोंट गो एनीवेयर कीप लिसनिंग टू सलाम नंबर्स ऑन रेडियो सुसंगम 94.7 FM

0: He has a super duper gana from the Dil Dil Pakistan from the Vital Signs. Before I play the last song, abhi jo hai 3 minute rahe. Ji, apne Salma ji kya kahengi?
1: Bas main ye kehna chahungi ki aap zarur PCA ko support kare, zarur jaye unke function mein. Aur yahi isi tarah hamari sabki unity badhti hai. Apne bachchon ko lekar jaye, apni family ko lekar jaye. Aur zarur attend kare. Sab log सब वॉलंटरी काम करते हैं तो उनको थोड़ी हिम्मत बंधेगी कि आप सब लोग पहुंचेंगे और हम आप सब लोगों को जो हमारे सारे पाकिस्तानी हैं यहां पर ओवरसीज कहीं पर भी हैं जो भी हमें सुन रहे हैं हम उनको पाकिस्तान डे की मुबारकबाद देना चाहते हैं उम्मीद है कि आपका जुम्मे का दिन अच्छा गुजरेगा और इस दफा जुम्मे के दिन पड़ा है 14th अगस्त तो अच्छा दिन है तो बस यही हम कहना चाहेंगे और हमें इसी तरह अपना प्यार से सुनते रहिए हमेशा हमारी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी और फिर हम और बात करेंगे इनका फंक्शन हो चुका होगा उस वक्त तक तो फिर इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज और अपना ख्याल रखिए
0: चलो इंशाल्लाह जो है कल मैं आपको फिर से मिलूंगा 8 o'clock फिर से फॉर द नेक्स्ट एडिशन ऑफ कॉफी जरा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा टॉक टू यू टुमारो लेकिन जाते-जाते एक और मिली नगमा

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: हो सकता है कि आप इसे अब्यूज ना माने, लेकिन अपने साथी को धमकी भरे संदेश भेजना, उनकी लोकेशन को गुप्त रूप से ट्रैक करना या उनके फोन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना भी अब्यूज ही है। तकनीक के माध्यम से किया जाने वाला दुर्व्यवहार शारीरिक नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव उतना ही गंभीर और नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप या आपका कोई परिचित तकनीक का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए कर रहा है, तो बदलाव संभव है। हिंसा को समाप्त करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए alberta.ca/endgbv पर जाएं। अल्बर्टा सरकार की ओर से संदेश।
2: पंजाब तो प्रसिद्ध पत्रकार जितेंद्र पन्नू जी नूं सोमवार तो शुक्रवार रेडियो सुरसंगम 94.7 FM ते सुनो। हफ्ते दे वी घंटे रेडियो सुरसंगम, radiosursangam.ca, फोन 403-585-0910, रेडियो सुरसंगम।
3: कैलगरीज ओल्डेस्ट, बिगेस्ट एंड ओनली साउथ एशियन रेडियो स्टेशन, सबरंग रेडियो 94.7 FM।
4: मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 7 to 8 PM, संडेज 1 to 5 PM।
3: विजिट sabrang.ca.
5: The following program speaks to the South Asian community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया
2: की होया
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन
2: ओहो रह गए ना फेर पीछे मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001 सोनिक इंश्योरेंस
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
4: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕੈਲਗਰੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹਿੱਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ

0: वे जिंदरा मैल आ मेरा भतीजा आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भूआ दी ननान दी कुड़ी है
1: ओ तू सारा टब्बर इकट्ठा करी फिरदा
2: ओ पाजी ये असी नहीं JFS इमिग्रेशन वालिया ने इकट्ठा करके दिता है JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप LMIA परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004
3: हाई क्वालिटी वाली फोटो चाहिए ने तो फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सुवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
4: 晚上十点
5: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7 A multicultural radio station in Calgary

0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना यह रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो आज फेर नहीं लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है ते बच्चियां नु फेर नहीं मिल होना दो दिन।
2: ओहो रह गए ना फेर पीछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दंदी है ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दंदे ने ताकि तुसी आप ही कंफर्मेशन दे सको बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नु फोन करो ते जल्दी जल्दी गाल करके कोई हल लभो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड